एलजी फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 years फुल वारंटी अब घर में स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ गुड

0: बुला रहा था, मरते मरते बची हूँ मैं।
1: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल चल।

0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको 3 बज्यो 8:30 PM